0: माँ शक्ति, आज पहली बार तुमने काम की बात की है।
1: This is Education featuring Yasin Bey and Black Thoughts from Freddie Gibbs. For all you art grads today, congratulations.